उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगों जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे, उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेक। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया, मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवाण आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टों दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगतां नूं छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे।

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई

तय हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पै गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए, फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए, व्यो मुखों सुते सप्पे दूध पिया लिए, विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए, मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे, आपन हथी आपनी जड़ आप उपटे, आपन हथी।

देख के कर दे परवासा थल विच तपन पठिया क्यों लहे प्यासा सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

थक आए पाकिस्तान, थक आए हर बंदना अखबार, थक पड़ो प्रभु दरबार, थक आए प्रभु की शाम, चार कुंठ दस परमे, जोन अनेक बिखे परम आयो, आए अनेक जन्म परम शरणी, लख 84 जुना परम दे परम दे से पाशाह तुम्हारे द्वारे आए हैं, आए अनेक जन्म

मैं तन वसा जो थन चंबल चिचड़ी लहू पीवे दुध ना खावे सब अवगुण मैं तन वसा।

गल नहीं, परमेश्वर तेन होर देवेगा, होर देगा तेन। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछो देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी बांह पकड़ ली, आख्या जे हर जाना नहीं देगा तो तेन राय बुलार को लै चलांगा। गुरु नानक दी बांह पकड़ के खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया, आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते, सारी खेती उजाड़ दिती। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया, ए तां मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवें क्यों कीता। आख्या मैं तां उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया, मैं ता जी जदों आए, राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। इदा हरजाना पर भई तेरा पुत्र है ना नानक। मैं ता कालू कहन लगा, ये ता है ही नहीं।

मोदी खाना ले दिता, आख्या इत्थे बैठ के हुण दुकान करेगा तां इसदा चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदे गुरु नानक ओदी चोली भर देंदे। एक दो तीन चार पांच जेड़ा आई जाऊं।

ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया उदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सार संगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के वस्तुआं दे जाऊंदा ते गुरु नानक सच्चा पातशाह चोलियां भरी जांदा किसे ने जाके विद्रोहियां ने शिकायत कर दी थी दौलत खान तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है जाके उदे कोलों हिसाब किताब ले नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा।

हाथों मोती खाना छोड़ देता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या हुण नहीं लेना। उत्थों वे ही नदी ते आए, बाला नाल है। साहब जी ने आख्या, बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख, ते असी वे ही इश्नान

ते उधर कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। ते भाई जय राम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी भरोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डुबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डुब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डुब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, ओ कदे डुब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप

सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने विपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन। ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा, ते एदी पत्नी नूं ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ऐ सुदामा तू जगदीश नूं मिलते सही, वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नूं दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया दो नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लै के पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लै के सिंघासन वल वधे।

अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहिंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ़ के दसम द्वार पहुंचा दिता जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जिहड़े सन ओ नाश हो गए। भाई साहब भाई गुरुदास जी फरमान करते हैं

चावल बन्ने हुए सन पोटली दे विच ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उस नूं ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओ की भगवान कृष्ण नूं जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नूं। कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों ओहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाणा मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरुदास जी उस दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां, चौथा दाणा मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोख का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनु दे दिते ते भाई साहब फरमान करदे

घट बड होता है जमी जमान के मिखे समस्त एक जोत है न घट है न बड है न घट बड होता है न हन है न बन है समान रूप

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड है न मृत है न पंड है। अकाल है अपाल है ख्याल।

के पलीराज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के भली बात कहूं असब होए के बह